0: यहाँ तो मिशन नहीं है, प्रार्थना मिशा पूजा नहीं होता है, इसीलिए हम सब सिस्टर के साथ में बैठ करके हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं।
1: इनका तकलीफ यही है क्योंकि उतने क्रिश्चियन ये में नहीं पढ़ सकते हैं ना, लोग का मनी का प्रॉब्लम है, इसलिए चर्च में नहीं पढ़ सकते हैं, लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, इसलिए उन लोग को सरकारी में तो कैटेकिस नहीं पढ़ाया जाता है। ये लोग मजबूत होने से ये लोग का और मजबूत होगा इस धर्म में।
2: मेरा नाम लेवस तिर्की है, मैं 15 साल का प्रचारक में हूँ कर रहा हूँ। मैं प्रचारक इसीलिए बना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ।

मैं प्रचारक का कार्य करने के लिए तीन जगह जाता हूँ। घाटोल, घाटोल का दूरी 5 किलोमीटर, इधर बसवार 15, तो इधर आरगोटी 8 किलोमीटर। मैं ये थैली पकड़ता हूँ तो जब गांव जाता हूँ तो ही बाइबल, रोजरी और भक्ति भजन, साथ में कपड़ा एक दो पकड़े रहता हूँ। कहीं भी गांव जाता हूँ तो लोग जहाँ जाता हूँ वहाँ तो अभी तक मेरे नज़र में खुश ही दिखते हैं।

0: इसमें अपने कार्य में वही पाप स्वीकार करने के लिए सिखाता हूँ और परम प्रसाद लेने के लिए और संस्कार लेने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ। फादर या गांव जाने से पहले मैं उनको प्रार्थना गाना या वहाँ की तैयारी करवाता हूँ और कभी कभी मैं वही गांव में वो प्रार्थना करवाता हूँ। या ईश्वर तक को पहुँचने के लिए अपना मन को बदल सके तो यही इच्छा के चलते मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ कि लोगों को कुछ के बीच में कुछ काम कर सकूँ।
1: In the beginning it was very hard. I used to visit village to village every day. So on foot, because that time there was no road.
2: This area is totally cut off from the main line. The best way we thought is to start parish to look good pastoral care of them and to offer them good education.
3: Before they are become Christian, they were believe in myths and they were worshipping stone and other things also. But after becoming Christian, they economically also improved, their behavior and mind pattern also improved, and they become more calm.
2: For their development,